राधिका के मबुंगो हे श्याम हे गोपाल सायोल कया ओनबीरबा बाशी खुंजिल ना वृंदावन बुनिल हनबा थमोय हुबा मितियंगना नहाकी ताइबंग बु इंहलिबनी नहाकी मोमोन मिनोक ना मालिम बुचुम थोकपिरी नक्त माला थोनबा खुत बाशी पाइबा खुरुम जरी नखुया थंबालदा पिना बियु थौजाल तोलबन नाइबू

0: लीला ड्रामा ने फिल्म गुमा तो गुइब्रा
1: फिल्म जु तवे दुगा ड्रामा जु तवे
0: करी करी फिल्म हाना कुंबी गिबा ममिंग हाइबे त तक यो याम खंगना ब
1: आइ जे याम कन्न दि कुम रे दो मतेक मतेक ति दुं खग याउ जग रे ब ओजा होई गि मखा द तरोगा अ ड्रामा ना ओजा दोरेंद्र के सामने काय ओजा गि मखा द चली
0: दुगा याउ गि गिबा फिल्म ममिंग गा मानि ड्रामा मतेक मतेक त ओरगा सुगन द रगा थोल याउ बबो ओर सु अमनि दाइ बि
1: फिल्म से याम कन्न बुदि याउ होइ जे दुगा एल्बम गुमा वेब सीरीज गुमा मतेक मतेक ओइना सोमने आउग्रे एल्बम दा खंतक अमाजु नंगरे दु दि पुथोक्त्रि मामिंग जे आइगि नुशिबि
0: या या नंगै जरे आकय आर्ट दिलम दे याम न डेडिकेट अरगन कथोक्तन लैगिरम बा इचा सिगे मा थैने जबनि इसागि हाइजबा डायलॉग टेलेन मसाम दे उपि युबा
1: आइ जे याम कन्न बुदि हाइत्रि एदो डायलॉग मतेम तंगोइन तवजरागे पंथौगि तोंग जई थाबम साबन थाबद इचागि आइबि मांगलबने लिंगजेल खाब पंथौओ
0: Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
2: Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank
0: you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
2: Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Passport item adu maya mana loi
0: khong yas ta ma sei dum khoi chani mu phoning loi sa ba dum ya ba mham ni sina ta ba isel je ato ba sin pham kari kari di to gi yoge si si khata to ba
2: ji ki oi na di si ga ta ne dum tau ri si
0: ya no ngai ji sin pham ma pan da ba su ya da ne khoi che pa la ga sian thum tan da ya ma thau tai ani khan ji ke nam ta ga hang ji di chal sia khoi radio gi sei lila drama di ta bi bro
2: adum kha ga adum tai es
0: radio ta bi ba ni na radio da lak pa akashwani da lak pa sei bu ar su sei ma tiem tu ar sam tan lan thuk bi wa
2: ai sei sei ya ma ibdi na te do ningjang ba ma mateng khak ngak ke
3: shakho nang ho i sei shakho tahin kho na ho bai sei gi shu kari khai ni kari ni ui ro ba i sei gi
2: ha
0: je mateo yam nang ajare isa nei sei mateo ma koi talent tu upi bani nam khali tan thaga sa ichanda manga mu une jage chanji chiwa koi gi radio da yamna thawa yok jaba akashwani program ring ta jara ga matam le jaba du gumba chalni ngi ming le pham am da habi
4: no da awa le kai ai yumna u heng bam bino
0: tin pham sikai ki chin pham pai bi ri ke
4: ai di an khara wor bani na phi sa jaram mi phi sa bad le pa go ji rani lang sak seri du gum ka khara jing jari sum pa tha bo ina ai puroi ba le gi da ba da gi wa khan jin nungai ta da na radio ani bu ta jari ai di u ji fm gi radio ma sa ma so ba ma to radio ओजिना आइगि मारु नि आइदि रेडियो तार ग पिनसि जिलेंजरि जाय मौजिन सेबा तोरग नुवाय नि हिंजरि
0: रेडियो ना मारु पोय बि बिस्ता जब द नायनि नाय लैतना थावा यक्सांग मख जावना नुवाय जे हाइजब तारे आइदि रेडियो से फजन ताबि बनि ना करि करि प्रोग्राम दि लीला ना नुवाय ना तगे सिने नुवाय ग हाइब गुम्बा लैबि बरा दाइ बि
4: आइ नि नुवाय जब जे अंगाउ बि दो इफुन दैर बि दो हाइब इसै दो ए याम पाम जाय सखप दि आइ जत्रे ताबगि दमक त दि अदु हे सलक पद अदु कब्जा रे आइ दुगा आइ गि लै हिद्रबा ਪੁਰੋ ਬਿਦੁਨਾ ਯਾਮ ਨ ਪੰਜਾ ਬਜੂ ਨਾ ਬੋਈਗੀ ਕਚੰਦਰ ਮੁਖੀ ਹੈ ਬੇ ਇਸੇ ਦੋ ਅਦੁਮ ਮਤੰ ਥਾਬੀ ਰਗਦੀ ਅਮੁਖੇ ਨ ਯਾਮ ਨ ਰੇਦੂ ਗੀ ਥੋਂ ਨ ਯਾਮ ਨ ਵਾਈਜ਼ਰ ਨੀ

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो मिंग लाइफ अमंग तंग हाई बी यू
1: मैम फोन तक से बजे कुराई अमोम ने कई दिन लाइसेंस हेरो जिन में
0: लाइसेंस
1: लाइसेंस हेरो जिन में
0: हेरो जिन हेरो जिन ने से दी करी सही तासी के
1: मैम ने से दी अहिंगी सिंगारी फिल्म देखी है
0: अहिंगी सिंगारी फिल्म देखी हाई बी यू
1: नवेगा मदाकिनी में तंग नंगी सत्तम से
0: इसाइसु यामना फजना गंथोपिरे नाउबोय अमासुंग पुष्परानीगे अपुनबो खोंजेलदा गापिगनी नाउबोय अमासुंग आरके नंदेश्वरीगे अपुनबो खोंजेलदा ओइदोइनी चुमिको
1: ओ मान मान नंदेश्वरी होय
0: मंगले मंगले मंगांगना सेरेंगबा अदुगा गोपी अमासुंग गीत पुन्न सैरंग मिना बाई सही सी वो दो ही नहीं हेलो
1: हेलो मैम पाजी
0: अहोय अदम गे सही से कुदल तम चले गे यार अद्रो मखाता नहीं सही सब पिके के है ब्रा अहोय अदम गे सही कुदल तम चले गे मैं यहाँ पुन्न तामिना सी ताक चली

0: हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग मणिपुर के थोरम नी।
1: गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, फोन तो बिरकली बसे मिंगा मदिले फमंग तक खंजे के
1: मैडम वो हम जो नंगुप सरी का खुम सरी मैडम आई खुराई थांग जमे का इतनी रोमा बत्ती नी मैडम।
0: अहोय रोमा बत्ती नसी दे करम फिल्म दगी करी से तासी के
1: मैडम अमूबसन दन फिल्म दगी देवलान छप्पा कई दिनो नंग बुनु शिवन तो वो तो नुशी जरा मालूम तो कि कौन जिम भी लिंग ना तुम लिंग ना ले हो ये तो वो नुशी जरा सक्कम तो दी ओवर पंग ही दे अतो कि सही तो यार तो दी ना दाम उधर था भी रखे रहने दाम
0: अहोय अमूबा चंदन की फिल्म ऐसी की ओए ना सरुंग बम देवलाना सक्पा कौन सा बा इबो चाउना सहिरिंग बा अदुगा अहिबम श्याम ना सहिरांग बा इसे ऐसे नी अदोंगी से कुतोल तमचरे के तमिनसी

0: हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग मणिपुर की
1: हेलो
0: थोरमनी हाइबियो मिंग अमा दिले फम
1: ना
0: हाइ बी यू
1: ना हाँ सेंड बता दे
0: मिंग अमा दिले फम हाने खंजे के
1: ने सुती दे के सामुंग हो
0: सामुंग हो गा सिदी करी फिल्म दे के करी सही तासी के अदोम ना रोए बकोलर सोई बिगत दो रिबनी
1: कनो की नंग सुमोंग ने फिल्म दे की रोशिंग का सपा आई जी तंगांग ले चिंबाना तोड़ों तक दे
0: नंग सुमोंग नी हरी बफुल मसिदगी ai ki tangang la chinba sina haina to bose rosibina na sakpa amarjit rajkumar na serengba atuga tomba thangjam la serang bai sei sini adong gi sei kudol tam jere ke taminar si
1: a

0: आकाशवाणी इंफाल हौजिक अयु के पुंग तरह तारे मणिपुरी मरुई बपाओ ताबीरसी
1: आकाशवाणी इंफाल हौजिक फाउबगी मरुई बपाओ मुख्यमंत्री जुमनांग खेम चान हंगसी एनआईए अनौब कोर्ट अमा थौबाल कोर्ट कॉम्प्लेक्स ता हुंदोक लगनी लोंग द होटल इंफाल द पांग पुपा कांगलुप मसेल गि मरकता नुसी चानब पुरक नब होना बदा पाउमी सिंग ने लौब याबा थौदांग सिंग गि मतांग दा पाउमी सिंग गि ओइबा सेमिनार अमसु मुख्यमंत्री ना हुंदोकनी मणिपुर के डायरेक्टर जनरल और पुलिस डीजीपी मुकेश सिंह ने कांगपोपी सेनापति जिला चतुना जिला अब फिवम यंगे कौशल डीजीपी ने जिला अनी मकोक थोंब पुलिस ऑफिसियल उन्नदुना फिवम की मणिपुर मिकोक थी थब होद्रिद नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन अपडेट तौदबनी खोलाव कौशल चतुना अचौब मिफम पांथोलगनी लुप तराम CSO of Kangley Park na sinduna miyang ki kongchat asi didim ground gi houduna thangmai ban gi thau ground phawwa chatkani ngasi world ocean day ni samudra na prithibi bu masamu phana thambada lawriba thaudang singbu miyam da khanga na banami asi leibak asi gi tongan tongan ba mapham sing yauna malengi mapham kya da palan tawri india meteorological department na hairi manipur yauna awang no poki raiji chingda ngasi akan banong chu gani leibak asi gi samudra mapal da leiba lam sing yauna mapong kya da nong chu gani hairi lok sabha gi adaksha om birla na nami khumi satha ga da ba zone 2 conference of commonwealth parliamentary association india region ngasi chandigarh da hodok lagani national testing agency nta na tha asi kunma thoida अमुक हन परीक्षा थागदरीब नीट यू जी इसिंग अनी कुंतर की एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप फोंखरे अमसुंग केंद्र की मपाल थरुण मंत्रालय ने हरी इंडोनेशिया ने लेबाक असिगी एक इस पॉलिसी थबक ओइना पाइकटपदा मरुइब थौदांग लौरी न्यू दिल्ली द इंडोनेशिया की मपाल थरुण मंत्री सुगियोनो अमसुंग मपाल थरुण मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर गा वारी छानबदा वाफम असि श्री जयशंकर ने फोंदो खिबनी पाउलै जरे

0: उनसे वो ये ठेक के लाख पनों उसे ओक्चा बता रे बना तराम ना नहीं नहीं ताक से ओक्चा दबा
1: तानिंग के बदाई ना हक इशिंगोंगी नुंग शीरा भी इराउ को ये निंग के बदाई ना हक हंगना लेंग लेंग चल लबा लबुक की जगोई तन था
0: ताई माँ
1: पाम जखी बदाई ना हक संभाल लेंग बाना बस सिंगा ननिंग तम न सेन सोंग दुन साना जब तीन जने के बदाई ना पागला बा अति आगे मकोई था उसे गोया सिंग न कोई पाई पाई दुन साना जब
0: तबे माँ
1: भी बुला भी अमां कोई भी जगाई सोंग भी साना निंग की बनी ना हाँ ना हराओ तया
0: मंसे की ऐ न मंगला मंसे की तब वो इसे इनिंग तम येंग जब अमित ये इनिंग तम न पाम जब अच्छीं था
1: ताई बीमा
0: आये अबल लाई तब अचुंबक कोंग था अदोबो अदोबो ममल ना इस रब पुंसी के कोंग चत अमदे अरे बदक के मन बता रब राई
1: था नंग नमी हो जाकी नसागी इज्जत नसागी गुन फुदोक चदन ममल लाई नहीं बा पुंसी महिंगा
0: मिठाई बेबा
1: मतिंग थोक नहीं बा नरम दोगी पुंसी मरे लामा आटे थोक नहीं बा पुंसी की महाओ अमा दाई बक टीवी मक पोक नहीं था पुंसी ला मक खांग सिदा थवाई से बिकम ना बना हे न फरब मक पोक इता
0: नोंग दम बना तंबी लमले बंतोंगी लंबे द तिंकं
1: बिभम तो इम्मा मल्लमा अपाम बनिंग बदल है बन अदोगी सुमतक था मिनाई नी नंग दी मिनाई नहीं थांगी मसा
0: इतने बे मा
1: करीब उंगम गनी नंग नदी या थंग अदो इन बनता
0: इतने बे मा
1: या निंग तम मदो हान तान को अदोगा कौन न सलो अपाम बल
0: कथोक जब तार अब रहता इसागे ओइ जब खड़ा पंगनबा पंतुं हमदे निंग तंबा
1: तंजा अदो लाख लबने नसी इनुंगान बदगी ननिंग तम लगनी ना ला पथारो ले
0: इता
1: नाइरो अहिंग सिगी अनीशु
0: बने इता बीमा
1: ना थाउ सिंधा पांग लनी मिनायो लिंग सुकोक लनी
0: इता बीमा

0: हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून लेडीज की थौरमनी, गुड आफ्टरनून कना ओइबिर बनो
1: नंबोल थियाम दगी मेमा
0: नंबोल थियाम दगी मेमा करम बा मणिपुरी फिल्म से ताविगनी
1: मेराम वारी लोइदि फिल्मगिने ताविब्र
0: होय होय वारी लोइदि फिल्म दगी
1: अजित
0: बाबू निजमगी मैनी सैरंगना ननाव सगोल मांगनी अदुदी इसाई खुदोल तमजर आगे मैं पुन्ना नुवाईना तामिनार सी
1: मगर तरी मेदा
0: थागचरी

जिसे आप ट्यून कीजिएगा 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर दोपहर के मनोरंजक कार्यक्रमों में से ये कुछ अलग ही कार्यक्रम है। ये अपना साप्ताहिक गीतों का कार्यक्रम है, गीतों का माला। गीत माला में आप सुन पाएंगे अभी गाने नए पुराने मेरे संग यानी अपनी दोस्त वैलेंटिना के संग।

दोस्तों हमारे संग है आपके लिए, आप ही के लिए, इस सोमवार के लिए खास ये गीत है जो गाने हैं नए और पुराने। नए गानों के साथ जो गुजरे हुए कल के गीत हैं उतनी ही अहमियत रखता है दोस्तों, इसीलिए आपके लिए जो दो पहलू है सिक्के का, उसी तरह आज का गीतमाला का ये रूप है गाने नए पुराने। और गाने नए पुराने में ये पहला गीत का तोहफा आपके लिए है इस मौसम में सर्दी बीत गई और गर्मी अभी चालू है, इसलिए जिंदगी के गुजरते हुए हाव भाव पलों को याद करते हुए ये गीत है अपनापन फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में दो गीत जिसके लेखक हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

ये जिंदगी है दोस्तों, और जिंदगी क्या कहती है ये ना आप जानते हैं या ना हम। आगे क्या होता है, आगे क्या होगा, ये भी न जाने हम न जाने आप। आशा भोसले की गायन में ये अगला गीत है वक्त फिल्म से, साहिर लुधियानवी की रचना पर संगीत प्रदान किया रवि ने।

0: मैं जाऊं।
1: ठहरो मीना, मैं खाना लेके आता हूँ, दोनों इकट्ठे खाएंगे। हाँ
2: चिराग जी, मेरी माँ सख्त बीमार है, डॉक्टर के पास ले जाना है, गाड़ी ले जा सकता हूँ?
3: हाँ ले जाओ, ले जाओ।
2: थैंक यू सर।

जिंदगी अद्भुत होती है ये जिंदगी। किसी को अपना या पराया कर देती है ये जिंदगी। किशोर कुमार की आवाज में बाबू फिल्म से ये गीत है मजरू सुल्तान।

अलका याग्निक की मधुर आवाज में ये था एक भावुक गीत। गीतमाला में ये अगला गीत है आशा भोसले की आवाज में, साहिर लुधियानवी की रचना द्वारा ये गीत है और जिस पर अपने संगीत से सवारा रवि ने। फिल्म का नाम है आदमी और इंसान।

और जिंदगी की यही रीत है दोस्तों, भूलना भुलाना, याद आना पास आना, दूर जाना। तो दूर से लगता है ये गीत आप ही के लिए, आपका ख्वाहिश पूरा करने के लिए आया हुआ है। मिस्टर इंडिया फिल्म से ये बहुत ही यादगार और मशहूर गीत है आप ही के लिए, किशोर कुमार की आवाज़ में, जावेद अख्तर के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में।

और जिंदगी के इस मधुर और प्यारे गीत को कौन सुनना नहीं चाहेगा और कौन इसको गुनगुनाना नहीं चाहेगा। लता मंगेशकर की गायन में ये गीत है सौतन फिल्म से। गीत के लेखक सावन कुमार और संगीतकार उषा खन्ना।

और जिंदगी आपके ही हवाले दोस्तों, जिंदगी मुबारक हो दोस्तों। और गीतमाला की तरफ से बार बार ये तोहफा रहेगा आपके लिए, आज के लिए अपने दोस्त को दीजिएगा इजाज़त और अगले कार्यक्रम के लिए रहेगा उचिता के संग। नमस्कार।

0: Western music tabiri hausik Manipuri da pau tabirasi
1: Akashvani Imphal Murang TV bina pau pajari मुख्यमंत्री युमनाम खेमसान हंगासी थौबाल की कोर्ट कम्प्लेक्स दै एनआईए गे अखन्नब कोर्ट अमा हांगदोख्रे हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर अमासुंग मणिपुर लेंगा की लॉ एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स ने सिंधुनाथ थौबाल जिल्ला की कांगाबुक दै लैबा कोर्ट कम्प्लेक्स दा पांगथोकी बा थौरम अदुदा वा ngangबद मुख्यमंत्री युमनाम खेमसान हाय ngasi हांगदोखलिबा अखन्नब कोर्ट असिना हाना एनआईए गी मरी लेनब केसिंग दा मणिपुर गी मपाल द सेल तिंगना अमादि मतम चंगना चलम बदु कोकलगनी थौरम अदुदा वा ngangबद हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की चीफ जस्टिस एम सुंदर ने हाय अखन्नब कोर्ट असि एन आई ए एक्ट लिसिंग अनि निपान की मखादा हांगदोपनी महाकना हाय
2: The inauguration of this exclusive special court Manipur for National Investigation Agency NIA cases is not to be spectacled merely as the opening of another courtroom. It is inter alia an ode to constitutional commitment, national security, access to justice and the rule of law. It represents the coming together of the union government, state government and the high court in pursuit of a common constitutional objective.
1: थौरम मदुद गृह मंत्री गोविंद दास कोंथौजम एमएलए सूर्य कुमार जस्टिस ए बी मोलयावना अतै मकोक थोंबा मियै क्या सरुक याकी मुख्यमंत्री युमनाम खेमसान कांगलुप मसेल की मरक्त नुंसी जानब पुरकनब होतनब दा पाउमी सिंग ना लोबा याबा थोकदांग सिंग की मतांग दा पाउमी सिंग की ओइबा सेमिनार अमांगाची होटल इम्फाल दा हौदोक्रे सेमिनार असि एडिटर्स गिल मणिपुर अमसुंग डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस अनिना पुन्ना खुसम लदुना सिनबनी सेमिनार असि दा राइज सरकार ना फोंबा पाउमी सिंग ना पाउ फोंबा मतम दा ngakadaba नीति नियम की मतांग दा टेक्निकल सेशन जु पांग थोकी थौरम असिग मरी लेना सोशल मीडिया दा थाकलक पवारोल दा मुख्यमंत्री नहाय राइज असि दा तंगदुले ताबा नुसी जानाबा मसुंग थाजब पुरनाबा होनाबा दा पाउमी सिंगि थौदांग जावी सरकार असिना राइज असि दा अपुनबगि सक्तम सागतबा मसुंग इंगतप पुरनाबा थबकया लेपतना पाइखली बीजेपी गि स्टेट प्रेसिडेंट अधिकारी मयुम सरदार देवीना राइज सभा मिखलग मरी लेना माकी मिरेप से ngasi असेंबली सेक्रेटरीयेट पिसिन क्रे मिरेप से पिसिन बदुदा मुख्यमंत्री युमनाम खेमसान एमएलए थोंगा बिसोजित त्रिपुरा की बीजेपी इंचार्ज अमसुंग एमएलए डॉक्टर राजदीप रोई लोइनखे मिरेपसे सिंह स्क्रूटिनी हयंग पांगथोकनी लाखलीब सबोल से नुमित मिरेपसे लोकतोपगी अरोइब नुमिनी बोर्ड जुन तरानी पांदा अयुक पुम मापल दगी नुंगथिल पुम मरी फावा थादनगनी बोर्ड मसिंग नुमित असिम

0: ngai kho ta khisi ta bi re pung pho ma si da pu du na lak chari sumang lila lesa bi ma chu ani su ba saru lila sa na bi ga da ba tom thin artist association lo bi re si lila lesa bi ma chu ani su ba saru
1: ha jin da na phaja ra me ko mai thong du de sai ge ni ngai he ai mu la ku lak da ba
2: anta ngai bi kho ba
1: kare
2: somna pu bi re gliba liki kep se pu bi kho
1: ho ai she nung dinu sjani na ha ai chale
2: sakta siga paisa pai ma sa ma su mi sin sakodong ta khat khada sakta mang ni hauk ta bane mi u sit ni ka na se sang ka na ti ma ta gum na
3: bi ma hai ma kai da ure ya mut ya man da na chaung na le ra mi da angang sing bi ja bi ta kwa ma tam yau dri bra ne bi ma
2: ine lak pa la me
3: lak pa ए मादी करी लाके लामी बसिदा
2: खंगने सनागी लिख परेंग म पुरगा एंगोन दे पी नी लामी बा
3: सनागी लिख लाहौर बरे नंग दिया
2: लाहौ दीने
3: लाहौ दब भाई सना लुपा गी लिख लांग परेंग ना थौरी कोंगोई ओइरगा सीखि बनु पी गी मसिंग थी बंगम दर बने लाहौ दब याम भाई
2: इनी ए
3: छिया
2: अंगा मियांग पिसा बि थाना बेम दे सेम सारो खिगे
3: चलो चलो मतम थेंग अपिक प थवाय गा तनी मतम जान जान पिजब तम को चलो चलो थेंगे शिया लापा लापा लापा लेबाक प्रजा मियांग की मरल बु फोंग ने लुट तौरीबा मयुम मकई सागन ब मामा मपा नुगाई नब मसा की मफिजेत ना नब मी की मयुम द बोम लंग छन बी नोमई कप छन बी लेबाक प्रजा मियांग की मरम रु खोंग पद हालेंग बले तब लापा मा कनागि परमिशन याउरगा आइगि लांगोल संगसिदा मफम मतम येलगा माचांग इबनो मराय बफै आइ थेंलरम लबदि मा खंगदा बनि
4: ने
3: छिया
4: ने
3: कना
4: इने
3: हिमा
4: इने
3: कुमै
4: इने
3: मुछिदा
4: इने
3: कुइरे द नवान पाउतादा
4: इने
3: नंगि थबक कमदौरे
4: इने
3: इने नंगि थबक तो तानिंग मन खौरांग नङायरम लिबनि हायो कमदौरे
4: इने आइगि थबक तो इने मंगोलोरे इने
3: मंगोलोरे
4: होय इने ai please oidore ne
3: nungai re da
4: haing dei di shilong gi nepa da training gi damak chalo haire
3: khumai
4: nungai ba pau che ini da hana tamu gi ge ne lai ni ne
3: punamak nang na khona jaba gi mapa na ni koi bua
4: na te ne punamak ini le ram da gi ne
3: khumai
4: taibang pa na sida ima sakpi ne nahak le ram dra ba di ai gi punsi ana wo ye ning chok na la re
3: ne te na te khumai adum na hai ga no ta hai di punamak taibang pa mu sem bi ri ba ईश्वर मागे थौजानने इने ने करी ngamdune nangbo ngasi gi tha ga sida purak pangam ga dori bano
4: ne
3: adu bu khumai
4: ne
3: ine ne ngasi na ngonda haining badi miwoi na pokla bani na ai khoi su miwoi ba samaj gi damak poklak pagi mahai yanana ba kari gumba khara di tophum thoi ko
4: su me ne
3: pok pagi mahai yanana ba nang na nang na ngamba dan tawramu
4: ne
3: lan da ba ngamba miwoi ba kana su leite una una khang na khang na aran belambi dena khong thangano haing nang na police officer ra gai bunga
4: ne
3: mara le jada ba nazati gi nachil ne nau nachi na sel sim bu ha laga ai promotion ka gani ai phamthol ka ge haiba wa khala du madi la na thamu
4: ne
3: na khoi nungai ba punchi gi wari taraga ini gi punchi gi pas punchi rol oi jage koi bunga
4: ini gi wai sing ase punchi chopa gi kaujero
3: khomai
4: adu ini a आई पोसेशन पैक तो गदब जुले इने ngasi de yawrogi ne mo
3: chalo chalo na ko phawa chikano
4: ine
3: matam punamakta mangolo bo yo koi bwa khomai nang toina toina pau phau lo ko
4: khomai ne
3: msida changba narabatiya da tongan tongan ba machu gi uchek singna mana mana pam je belambi de chana khibago pidona kana lejedana ngasi ai gi tampak ta sare kangdong phajarak laba thawai kayana मान मान पान जब लंबी दे चना करे मसीरा ताईबंग पान है बतो
4: ने
3: है ना हिंदू
4: ने
3: कहीं नोंग सीधी मंग जब मान रे इन्हें दी
4: ने
3: ताज़े तो ने ना कोई पुना मंग सीधी इन्हें ही मांग दे लिए ले
4: ने
3: ना वान पाव ताज़े बस कोई ले नंग ना कदाई दे ले
4: इन्हें ऐ ऐ जब बता रे इन्हें
3: हाँ कदाई दा
4: लैंप तुम हम खंग दे
3: इने
5: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯈꯨꯔꯀꯟꯕꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯀꯟꯕꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯨꯝꯕ ꯇꯣꯜꯂꯕ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯍꯤꯡꯐꯝ ꯂꯩꯇꯦꯅꯦ
2: ꯍꯦꯟꯖꯨ
5: ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯅꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯇꯣꯜꯂꯕ ꯇꯥꯔꯕ ꯀꯌꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯎꯠꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯎꯔꯒ ꯅꯌꯥ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯇꯦꯛ ꯈꯔꯁꯤꯗꯤ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛ ꯇꯣꯜꯂ ꯇꯥꯔꯕ ꯀꯌꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯠꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯏꯅꯦ
2: ꯍꯦꯟꯖꯨ
5: ꯏꯅꯦ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯏꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯆꯦꯜꯂꯤꯕ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯅꯤꯄꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ
2: ꯍꯦꯟꯖꯨ
5: ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯇꯥꯎꯊꯔꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅꯔꯛꯂꯕꯗꯤ ꯏꯌꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯆꯥ ꯅꯠꯇꯦꯅ ꯏꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯂꯕꯁꯨ ꯈꯨꯠꯇ ꯃꯔꯥ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯗꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ
2: ꯏꯅꯦꯒꯤ ꯍꯦꯟꯖꯨ
5: ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯌꯥ ꯍꯦꯟꯖꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯊꯣꯛꯂꯕꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯌꯥ ꯍꯦꯟꯖꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯗꯤ ꯀꯣꯡꯈꯠꯄꯤꯔꯨꯀꯣ ꯏꯅꯦ
2: ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯖꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯁꯛ ꯆꯨ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯏꯅꯦ ꯈꯪꯉꯤ ꯏꯌꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯅ ꯑꯗꯨ ꯌꯧꯔꯕꯗꯤ ꯏꯅꯦ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩꯗꯁꯨ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯏꯅꯦ ꯊꯤꯡꯉꯣꯏ
5: ꯏꯅꯦ
2: ꯆꯠꯂꯣ ꯅꯪꯅ ꯅꯪꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯄꯟꯊꯨꯡ ꯌꯧꯅꯕ ꯇꯧꯕꯇꯗꯤ ꯕꯨꯋꯥ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗꯗꯤ ꯈꯛ ꯅꯈꯣꯡ ꯊꯥꯡꯒꯅꯨꯀꯣꯏ ꯕꯨꯋꯥ ꯅꯪꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯅꯈꯣꯡ ꯊꯥꯡꯒꯦ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯣꯏꯔꯕꯅꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯂꯥꯎꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯂꯥꯟꯗꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗꯗꯤ ꯆꯠꯀꯅꯨ ꯀꯣꯏꯕꯨꯋꯥ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯃꯥꯖ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯃꯤꯡꯇ ꯇꯥꯕꯗ ꯀꯤ ꯇꯨꯀꯠꯆꯕ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯊꯋꯥꯏꯕꯨ ꯑꯣꯠꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯎꯋꯂꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯪ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯨ ꯃꯁꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯏꯅꯦ ꯅꯈꯣꯏꯗ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯣꯏꯕꯨꯋꯥ
5: ꯏꯅꯦ ꯏꯅꯦꯒꯤ ꯌꯥꯊꯪ ꯏꯀꯣꯛꯇ ꯍꯥꯞꯆꯔꯤ
2: ꯅꯀꯣꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯤꯛꯀꯅꯨ ꯅꯪꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯂꯒ ꯅꯃꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯅꯖꯥꯇꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯣꯜ ꯂꯣꯝꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯌꯨ ꯀꯣꯏꯕꯨꯋꯥ
5: ꯏꯅꯦ
2: ꯃꯁꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯏꯅꯦ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ
5: ꯏꯅꯦ ꯅꯌꯥ ꯃꯉꯣꯟ ꯑꯣꯏꯖꯒꯦ
2: ꯆꯠꯂꯣ ꯆꯠꯂꯣ
5: ꯏꯅꯦ
2: ꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯄꯤꯗꯣꯅ ꯍꯧꯔꯛꯂꯕ ꯊꯋꯥꯏꯅꯤ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯄꯤꯗꯣꯅ ꯁꯨꯃꯛ ꯂꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯦꯗꯣ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯨ ꯑꯃ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯆꯨ ꯀꯌꯥꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯄꯥꯟꯅꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯏꯍꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯕꯨ ꯄꯤꯖꯕꯤ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯏꯕꯦꯝꯃ
6: ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯑꯅꯧꯕꯗꯨꯕꯨ ꯀꯗꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯕꯣ ꯃꯌꯨꯝꯗꯁꯨ ꯂꯩꯍꯧꯗꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯪꯈꯣꯜꯁꯤꯗꯁꯨ ꯂꯩꯇ ꯃꯥ ꯂꯩꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯎꯅꯁꯤꯒ ꯍꯥꯏꯖꯜꯂꯤ ꯍꯪꯒꯥꯝ ꯃꯄꯥꯜ ꯀꯣꯕꯤ ꯁꯣꯝꯗꯅ ꯍꯋꯥꯏꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯩ ꯂꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯊꯥꯔꯤꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔ ꯃꯥꯜꯂꯤ
7: ꯃꯥꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯕ ꯅꯪꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧꯔꯝꯃꯤꯕ ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯉꯥꯏꯈꯣ

समलब न खंगन जरी खंगन जब से एक लुई बगा लांथोक जगनी नारोल की खोंजल थोरम से दा डिपार्टमेंट ऑफ उमंगलाई हरौबा मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर द पंगथोकबा टैलेंट हन प्रोग्राम ताव फंगबिगनी थोरम लांथोक पिग दे सिंग दी सेफलिना मदी डिवेक्टो पुथोक पद तिंगबांग बसिंग दी विक्टोरिया बनलाल थुइबी मदी रोजेंद्रो पुंग तरुक मिनी निफु खुंगंगी थोरम संदुक जगनी थोरम से की अहान बदा नासेम दुर्गेश्वरी देवी ने सक पपेना अमदी अरोई बदा नुमेले थाब अमदी चेक्षिन थोरां हाई बसिदा केवी के सेनापति की सेनियर साइंटिस्ट अमसुंग हेट डॉक्टर नोमाइटम जोत्सना देवी का उन्दुन वरी शाब थमजरी उन्नबी गदबा युमनाम मेमा थोरम पथोकपा रायचंद्र सिंह था गुड इवनिंग मणिपुर लांथोक चगनी नुमिदांग पुंग तरित मिनिट यांखई पुंग मापन मिनिट मंगा पुकनिंग इहुल तहन चगनी मणिपुरी फिल्म से इताब फंग बिगनी नुमिदांग पुंग मापन मिनिट कुंत्रा मंगा पुंग तरा गीत ताब फंग बिगनी हयेंग इंगांगे कुनमरी निपानबा जुन तांग मापन लेवाक पोकपन नुमिद अयुक पुंग मंगा मखई ताब मतम दा संगाई चनेल संदुक बहु जगनी अयुक पुंग मंगा मिनिट कुंत्रा तरित यकाई रोल संदुक जगनी हयेंगे यकाई रोल दा यंद्रेंबम मेरा जाऊ मुई तैन सकप पेना संगीत मला की सही सकप सिंग सकप इमाले बाकु खुरुम जबी शे थोंगाम कैनाहन बिदेवी कोंग्राई लाकपन दिनी शर्मा मदी नोमाइटेम प्रेमावती ने सकप लाइसोली शे मथंग मथंग मुइना तहन जगनी पुंग तरुक मिनिट निफो रेडियो क्लास चहुम तरियत सुब तांकता क्लास सेवन मणिपुरी लाइक लाइसु लेसन टेन लांथोक जगनी थोरम से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एस समग्र शिक्षा मणिपुर की तेंगमांग लोइनना पुथोक जबनी खोंजल नाचोमदा साइंस मैगजीन लांथोक तुने तहन जगनी अयु पुंग तरियत ताब मतमदा आहानबदा ब्रेन की सेल सिंगु चाथोक पंगंबा अमीबा नेग्लेरिया फोलिया दगे अखोई चेक्सीब करी की मौ तारीबनो हिम अब डॉक्टर आर के लोकेश्वरी थोरम लांथोक पीगदब संगीता नमाइरप अनीसुबद खो की महुगे मरुब चनफम हिमद रमजास कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर मयांग लंबम अजित कुमार सिंह उन्नदरी साब थमजरी उन्नगदब नौथोंबम रोमा थोरम पथोप रायचंद्र सिंह थाम पुंग तरित मिनिट निफु अतोप मंगाद महरोद लाइब्रेरी की कानबी चंगी हईनबी सामगप हिमद कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सेंट्रल एग्रीकल्चरिंग यूनिवर्सिटी इरो सेंबगी लाइब्रेरी असिस्टेंट मोंगजम सोबिता देवी वरी साब थमजरी उन्नगदब केनी कोंखम थरुम पथोप थोकचोम रेणुबला अयुक पुंग निपाल नारोल की खोंजल गैलेक्सी सिस्टम लोकताक प्रोटो क्लस्टर पुथोखिबा एस्ट्रोफिजिक्स सिस्टम दी नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ जापान दा पोस्ट डॉक्टरल विचार सर डॉक्टर रोनाल्डो लाइसोंगा उन्नदन वरी साबा तहन जगनी उन्नबीगदब थी रोम पुंगीपान मिनी निफुनी थोई थमजरी गुड मॉर्निंग मणिपुर महू सागों गीत लांथोक जगनी अयु पुंग तरा मिनिट अनी कोंचित सिगी वारी नी थमजरी नुंगथिल पुंग अहुम मिनिट मंगा थोरम से दा जापानीज लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर इरुंगबम मंगाल गे उन्नदुना वारी साबा अहान बसरुक तहन जगनी उन्नबीगदब मदी थोरम पुथोकपा नोंगथोंबम ब्रोमा पुथोकपद तिंगबांगबा संगाकपम दीपचंद्र शर्मा पुंग अहुम मिनिट कुंथ्रा मंगा रेडियो क्लास सहुम गा तरित सुब तांकता क्लास सेवन मणिपुरी लाइक लेसु लेसन इलेवन लांथोक जगनी थोरम से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एस समग्र शिक्षा मणिपुर की तेंबांग लोनना पुथोकजबनी पुंग तरुक मिनिट तरह नहरू की खोंजल मेरोल जेंडर इश्यूस खब की तंगाई फदब हाबसीद ऑथर आर्टिस्ट अमना की सेक्रेटरी शांत खुराईगा उन्नदन वरी साब तहन जगनी महु सागुंग गुड इवनिंग मणिपुर थमजरी नुमिदांग पुंग तरित मिनिट जांखई पुंग मापन मिनिट कुंथ्रा मंगा मणिपुरी फिल्म से थमजरी नुमिदांग पुंग तरह ताब मतंदा गीत लांथोक जगनी

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम और ये
1: मेरी गुड़िया के नाम।
2: दादी आपके नाम?
3: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो।
2: क्या
4: RBI कहता है।
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: अरे रीमा सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
7: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
6: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
8: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर
9: स्पेशल इंटेंसिव रिविजन SIR 2026 जून की तांग कुनिपान फाउबदा BLO हाइबदी बूथ लेवल ऑफिसर सिंगना युम थोंग कुतिंग चत पगी खोकचत्ता अदोमसु निंथी जना मतेंग पांगबियो एन्यूमरेशन फॉर्म अदु मेंसिन बिदुना ख्वाइदिगी नौबा कलर पासपोर्ट फोटो अमगा लोइनना पिसिन बियो एन्यूमरेशन फेस असिदा डॉक्यूमेंट अमता लोसे लोय लोइनना हियरिंग याउदना इलेक्टर अमतागी मिंग कक्थत लोय एन्यूमरेशन फॉर्म थाजिन खिबा इलेक्टर खुदिंगमक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल दा मिंग यौरकनी SIR 2026 Every voter counts. Paujenjari Ba, District Election Officer, Imphal West.

0: 会的闭幕后了，更为后嘞。啊，这个雷人呢，我是在写的，不是阿星呢，别罗星呢，用通过定拉不得，我可以不 cooperation 闭幕。雷人呢，波尔根 party 的 side， 啊，这个雷比利文不 level agency 的说，我可以是 cooperation 闭幕的呢 ，daily bomb assembly consultancy 的，这他里吧 ，special intensive revision high exercise， 我碰盘起。
1: 40 Jiribam Assembly Constituency ki oina cha tharakli ba special intensive revision asida voter khudigmakna puning sengna biolo singbu mateng pangphom thoi amadi ngamkhai jila asigi asengba voter masing ningthina khangdoktuna jati kangrup kyana punna khunda minareba constituency asigi amata ngairaba mireb amabu khanbadasu aikhoi khudingna mateng pangphom thoi loinana booth level officer singna कांगलोप की इरांग नमरम ओजना मफम के आधा संग्रह फम लोधुना लेरीबा इंटरनेट डिस्पेस पर्सन सिंबुसु खुनाय ऐसी की खंबी दुना थमोइसिंग न थबक ताऊबा जिरी म्याम न पामनरी

0: भी नहीं आए अब तक।
1: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
2: So girls, क्या हो रहा है?
3: बिल हो रहा है।
2: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
4: RBI कहता है अपना पिन OTP CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: tahan jekri bisay sigaloy na na. Matangasida, good evening Manipur lantok chaba lusin jari. Tauramasida, SMS tabirakto na. Tungan-tungan ba, koy dabi bisay singkan birakto na tarumapung pan biraki ba pumnamagpo. Takat ba pungdok jari loy na na, haubudagi na, loy ba fawba tabiram liba pumnamagpo su, takat ba pungdok jari. Akaswan infal. Hauzik numidangi pung mapantari, Manipuridam pao tabirasi.
1: आकाशवाणी इम्फाल वहेंगबम राजेश ने पाव पाजरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नंगसी आर्म फोर्सेस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स स्टेट अमसुंग यूनियन टेरिटोरी पुलिसिंग द गैलेंट्री अवार्ड खुशी नकरे राष्ट्रपति भवन नंगसी नुमिदांग पांगथोकिबा डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी द मना सिंह अदु राष्ट्रपति ना खुशी नकिबनी मदुदा कृति चक्र तरेत वीर चक्र तरामंगा शौर्य चक्र कुमापन याउरी लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज परासर लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीश भारती शुक्ला मेजर आदित्य प्रताप सिंह इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवाट अमसुंग रामेश्वर दुर्गा देशमुक्त शौर्य चक्र खुशीनकी शौर्य चक्र फंगलबसिंग मनुंगदा तरामाथोई सुबा पेरा सेक्युरिटी फोर्स थबक तोरिबा मणिपुरगी मेजर लैसांगतेम दीपक याउरी वीर चक्र फंगलबसिंग मनुंगदा इंडियन एयर फोर्स द स्क्वाड्रन लीडर ओरिबा रिजवान मालिक याउरी मसा लैकिद्रब मतुंगदा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मखादा बीएसएफ द थबक तोरंबा दीपक सिंगाखमदा वीर चक्र पीरे थौरमदुद उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ngaksel मंत्री राजनाथ सिंह केंद्रगी मंत्री सिंह अमदी मकोक थोंबो ऑफिशियल कैमरा सरुक याकी पद्मश्री अमसुंग अर्जुन एवार्डी श्रीमती ओ बेमबेम देवी अमसुंग ओलंपियन अमदी अर्जुन एवार्डी श्रीमती सोनिया चनु नंगसी मुख्यमंत्री युमनाम खेमचान सिंगा महाकी सेक्रेटरी उनक्रे

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और कार्यक्रम है हर श्रृंगार और मैं हूं आपके साथ जी हां रितिका। अभी ये जो गीत आपने सुना है ना सड़क फिल्म का था। जी हाँ 1991 में ये फिल्म आई। अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज में आपने ये गीत सुना। नदीम श्रवण का संगीत और इस गीत को लिखा समीर ने। और वाकई में कहते हैं कि भाई जब दिल किसी को अपना बनाने का फैसला कर लेता है ना तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। बस इसी गीत में जो था जो अभी आपने सुना कुछ ऐसा ही था। अगला गीत वो भी बहुत ही खूबसूरत है ना। कभी कभी दिल इतना दीवाना हो जाता है कि हर पल बस उसी एक शख्स के बारे में सोचता रहता है, इंतजार भी करना चाहता है और जब वो सामने आ जाता है तो जबान कुछ कह नहीं पाती लेकिन शरीर के हाव भाव जो है ना वो सब कुछ कह जाते हैं। मानते हैं ना आप भी इस बात को? तो चलिए सुनते हैं अपना अगला गीत कुछ इसी पर।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें पीएमसूर्यघर.gov.in पर।

बस आप भी हमें यूं ही ढूंढते ढूंढते आ गए हैं ना 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. जी हाँ, यही है खूबसूरत प्यारे से मीठे गीतों का पिटारा. अभी जो आपने गीत सुना लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में था फिल्म पत्थर के फूल से. राम लक्ष्मण का संगीत और रविंद्र रावल का संगीत. दोस्तों, प्यार सिर्फ एहसास नहीं है, एक बातचीत भी है. कभी हम कहते हैं, कभी वो सुनते हैं, और कभी वो कहते हैं और हम सुनते हैं, और बस इसी में एक सुंदर सा गहरा सा रिश्ता बन जाता है. दिल से दिल की इस प्यारी सी बातचीत को एक गीत के रूप में सुनें.

तो दोस्तों हर श्रृंगार में आज बस इतना ही। गीत मेरे मनमीत 11:10 पे शुरू होगा और उसमें होगी आपसे एक बार फिर से मुलाकात। और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
1: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
2: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी। ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है, ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता

राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हुई है। तो ये वृद्धि अपने आप में दर्शाती है कि एमएसपी को लेकर के और किसानों को समर्थन देने में और क्रॉप डायवर्सिफिकेशन की सिर्फ बात नहीं की जा रही बल्कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहीं कहीं पे 179% बढ़ाया गया जिससे वो उन फसलों के प्रति जा सके। आपको यह जान के आश्चर्य होगा इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है जैसे अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी किसानों के लिए जो सबसे बड़ा इंफ्रा होता है वो उनकी क्रेडिट की व्यवस्था होती है
1: जी।
0: क्रेडिट की व्यवस्था में केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के जो अकाउंट्स थे वो 6.4 करोड़ थे लगभग 6.5 लाख करोड़ के आसपास किसानों के पास केसीसी अकाउंट है। आज की तारीख में ये 10.2 लाख करोड़ है यानी कि लगभग 2 गुना हो गया लगभग 90% इसमें इजाफा हुआ है। तो ये अपने आप में कल्टीवेशन एक्सपेंसेस में खास करके पोस्ट हार्वेस्ट रिक्वायरमेंट और मार्केटिंग में इसमें अमूलचूल परिवर्तन हुई है। और जहां तक कृषि की बजट की बात है कि जितना बजट पहले हुआ करता था उतना तो आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों को डीबीटी कर देते हैं हमारे पास डीबीटी का बजट ही 70,000 करोड़ रुपए का है। तो कृषि में जो ये इन्वेस्टमेंट हुआ है इससे यह दर्शाता है कि ये सरकार पूरी की पूरी विलेज लेड और फार्मर सेंट्रिक डेवलपमेंट के लिए ही बनी थी और इसी आधार पे ये सारा कुछ हो रहा है। और उसके साथ साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेज हुए खास करके कोऑपरेशन मिनिस्ट्री को बनने के बाद और उसमें जो पंचायतों में 2.5 लाख वेयर हाउसेज बनाने की बात आज तक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में वेयर हाउसिंग में कहीं भी किसी भी समय में भी कभी नहीं हुआ जितना अभी हो रहा है। तो सारे पैक्सों को वेयर हाउस में कन्वर्ट करना और वेयर हाउस वो नीली छत और पीली दीवार वाले नहीं हो करके स्मार्ट वेयर हाउसेस कैसे हो जो ब्लॉकचेन से लिंक्ड हैं एवरी ग्रेन इज ट्रेसेबल ऐसा सिस्टम बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो फूड सिक्योरिटी के जो ऑब्जेक्टिव थे वो तो पूरे के पूरे हो रहे हैं पूरी दुनिया देख रही है उसको हाँ। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल रिजिलियंस एग्रीकल्चर के लिए और खास करके जो मार्केट एक्सेस जो पहले नहीं था एमएसपी को कैसे ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बनाई जाए इसके लिए 26 लोगों की कमेटी बनाई गई जिसका मैं भी सदस्य हूं जो 5 इसमें सचिव महोदय भी इसके सदस्य हैं। तो इतनी बड़ी कमेटी के द्वारा जो कुछ भी रिकमेंडेशन पिछले 4 वर्षों से जा रहा है उसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है और आप आमूलचूल परिवर्तन देख रहे हैं कि किस प्रकार से न सिर्फ केसीसी अकाउंट और प्रोक्यूरमेंट में और एमएसपी में एक गुणोत्तर वृद्धि में बल्कि जो सबसे ज्यादा सुविधाएं लोगों को मिल रही है वो डीबीटी हो या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो इन सब में एक आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है और खास करके हम बड़े सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारा किसान सिर्फ बीज बोना और उगाना नहीं जानता था बल्कि वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर की जो पूरी एक वैल्यू चेन थी उस पूरे मूल्य श्रृंखला में किसान किस प्रकार से कहां खड़ा है और कैसे वो किसान उसका हिस्सेदार हो प्रत्येक मूल्य श्रृंखला के हर भाग में ऐसी नीति बनाई जा रही है और उसको एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है।
1: सो मिस्टर प्रसाद जैसा कि मिस्टर प्रधान ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया कि जो एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन है उसके हर कदम पर जो सरकार है वो समर्थन प्रोवाइड कर रही है एक कोलैबोरेटिव वे में जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है जो हमारे फार्मर्स हैं उनको सशक्त किया जा रहा है। डीबीटी की उन्होंने बात की ये दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा डीबीटी इनिशिएटिव यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनिशिएटिव माना जा रहा है किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इसके बारे में बता सकते हैं कि इसका जो शुरुआत होती है जब एक क्रॉप साइकिल की क्या इसका महत्व है किसानों के लिए और जिस लेवल पर इसका जो यूज हो रहा है 9.44 करोड़ फैमिलीज से ज्यादा बेनिफिट करे हैं इसमें और 4.2 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा डिसबर्स किए जा चुके हैं 22 इंस्टॉलमेंट्स में इसका जमीनी तौर पर जो किसान है उनके लिए क्या महत्व है।
2: सुनो जी हम सब जानते हैं कि भारत में किसान जब भी परेशान रहे हैं और उनकी दिक्कतें बड़ी हैं तो एक चीज जो सरकार के अलग अलग स्टडीज ने बताया है कि खर्चा सिर्फ किसान और कृषि के काम के लिए नहीं उनके घर के खर्चे के लिए भी काफी कुछ उनके समस्याएं आती है। तो वो पारंपरिक जो तरीके हैं गैर पारंपरिक तरीके से वो क्रेडिट पाते थे यानी कि पैसा लेते थे ब्याज पे तो काफी परेशानी ज्यादा बढ़ जाती थी। तो छोटा सा इसके लिए एक मदद के लिए कि जैसे आपने साल में 6,000 मिलते हैं 2,000 के डीबीटी यानी कि सीधा पैसा का हस्तांतरण बैंक अकाउंट में होता है तो इसमें सबसे बड़ा है कि छोटे खर्चे के लिए किसान को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है उसके खाते में पैसे हैं अपने रोजमर्रा जिंदगी में छोटी मोटी जो उनके खर्चे हैं वो निकल जाते हैं। तो एक उनको तसल्ली होती है हर आदमी को मतलब एक सुरक्षा महसूस होता है कि भाई हाँ मेरे खाते में पैसे हैं कभी जरूरत हो तो मैं उसको और जैसे आंकड़े आपने बताए हैं जिस तरह से 2026 तक जब भी बात हुई है तो 9.44 करोड़ किसान परिवार को मिला और इसमें 25% से ज्यादा महिलाओं को सीधा साथ इसका बेनिफिट मिल रहा है इसका तो ये एक जिसे कहते हैं छोटा कदम है लेकिन महत्वपूर्ण कदम है।
1: और और इसी कड़ी में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है या जो किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये सभी जो आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक कड़ी है पूरे जो एक साइकिल होती है एग्रीकल्चरल साइकिल। अगर आपको कहीं भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो पहले ये था कि आपको मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था जो बहुत ही डिफिकल्ट टर्म्स पे आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको देते थे और ये सब जानते हैं कि किस तरह से वो उसके चंगुल में फंस जाते थे। तो ये जो सारी सुविधाएं प्राप्त हुई आपको लगता है ये एक तरह से फ्रीडम प्राप्त हुई है फार्मर्स को और उनके सशक्तिकरण के लिए, चाहे वो फसल बीमा योजना हो जिसमें इवन वाइल्ड एनिमल्स अगर आपकी क्रॉप को खराब करते हैं तो उसके लिए भी आपको मुआवजा मिलता है। ये सभी बहुत छोटे दिखने वाले लेकिन अगर हम इनको मिलाकर देखें तो बहुत बड़े कदम है आर्थिक सशक्तिकरण के लिए।
2: जी सुनिए, सबसे बड़ी बात है ये दिखाता है सरकार कितना संवेदनशील है कि अलग अलग जो समस्याएं किसानों को आती हैं उस पर ध्यान उनका गया ही नहीं, उसके निवारण के लिए अलग अलग काम किए। जैसे आपने कहा पशुओं का, खासकर जो जंगली जानवर हैं वो खेत में घुस के खड़ी फसल को खराब कर देते, तो अब उसमें किसान की तो कोई गलती नहीं है, बाहर लगाया भी होगा लेकिन रात भर निगरानी भी रखी होंगी, लेकिन कभी ना कभी कुछ इस तरह की आकस्मिक कोई घटना घटती है या जैसे हम जानते हैं कि बेमौसम बरसात आए या बेमौसम आंधी तूफान आए तो उनको नुकसान होता है। अभी हाल फिलहाल दिल्ली के आसपास जो बारिश हुई है उसमें कई खड़ी फसल में नुकसान हुआ है, तो ऐसे में किसान बीमा योजना जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये काफी सारा व्यापक है और इसमें सरकार की जो इसके पीछे सोच है वन नेशन वन क्रॉप वन प्रीमियम, यानी कि एक ही जैसा आप बीमा कंपनी को अपना प्रीमियम राशि जमा करें और उसके बदले में आकस्मिक कोई घटना घटती है आपका जो बीमा कंपनी है उनकी तरफ से आपको मुआवजा दिया जाएगा। तो आंकड़े बताते हैं कि 2016-17 से तो करीब 93 करोड़ या 92.5 करोड़ कृषक इस तरह के और करीब 2 लाख करोड़ रुपए तक लोगों ने 25 दिसंबर तक इसमें फायदा उठाया है। सोनू जी
1: जी बिल्कुल, एंड मिस्टर आनंद कमिंग टू यू, यू नो द काइंड ऑफ एक्सपेंशन 2.5 times इंक्रीज इन द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड्स व्हिच हैज टेकन प्लेस, इज इट नॉट ओनली द क्वांटिटी द क्वालिटी आल्सो, द फिशरीज द एलाइड सेक्टर्स दे हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड एंड इनफैक्ट फॉर द एलाइड सेक्टर्स दिस गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ स्पेशल मिनिस्ट्री एंड देयर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, सो यू थिंक दैट एनहांसिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स दीज एलाइड सेक्टर्स आर प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल।
0: देखिए जो फूड प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ और फूड सिक्योरिटी, इसके बीच में जो कुछ भी समस्याएं होती थी और उसका कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री से बहुत लेना देना था, तो सबसे पहले सरकार ने अपनी मंशा क्लियर कर दी कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे। मैं फिर से बताता हूँ ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव नहीं है
1: जी।
0: ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। ये शब्द स्वयं बहुत कुछ बयां करती है सरकार की नीयत के बारे में। नीतियां तो बाद में बनती है और एग्जीक्यूट होती है, तो सरकार की नीति बहुत क्लियर है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे और सारे कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स उसके तहत लेके आएंगे जो किसानों के भले के लिए हो। तो सबसे पहले कि कोऑपरेटिव का डेटाबेस आज तक हमारे पास नहीं था कि कितने पैक्स हैं, कहां हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें कौन अच्छा काम कर रहे हैं, किनको बहुत कुछ अच्छा करना है, किनको हम बहुत लिक्विडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहला काम तो ये किया गया कि ये अपेक्स टू पैक्स का अप्रोच कोऑपरेशन में नहीं रहा, ये
1: सो पैक्स जो कह रहे कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी
0: जी बिल्कुल, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से ऊपर हम लेके जा रहे हैं अपेक्स तक, जो एनसीडीसी और नाफेड और जो आप बड़े बड़े जो कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट हैं उसकी तरफ। 25 बिजनेस एक्टिविटीज पैक्स अपने आप में कैसे रिसोर्सेज जनरेट कर पाए, जो इनपुट का बिजनेस है उसमें कैसे भागीदारी ले पाए, इसके लिए उनको 25 बिजनेस एक्टिविटीज से उनको जोड़ा गया, यहां तक कि आपको पेट्रोल पंप, एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जन औषधि केंद्र, इस प्रकार से जो प्रॉफिटेबल बिजनेसेज हैं वो भी कोऑपरेटिव को पैक्स को दिए गए। 79,630 यानी कि लगभग 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइज किया गया 31 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में। 61,886 पैक्स को ऑनबोर्ड किया गया ईआरपी के माध्यम से, यानी कि हर समय शाम के 5 बजे तक एक क्लिक में अब ये कंप्यूटराइज हो गई, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि आप एक क्लिक में वहां पे क्या एक्टिविटी हो रही है उसकी मॉनिटरिंग यहाँ की जा सकती है। वो रजिस्टर पे एंट्री सारी बंद हो चुकी है जिसमें बहुत बड़ी समस्याएं थी, तो कहां 1947 से हम बातचीत तो कर रहे थे लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में उसमें जो ट्रांसपेरेंसी लानी थी उससे हम कहीं दूर, बहुत दूर बैठे थे। तो एक तो ये सबसे पहला सुधार किया गया। आपके माध्यम से मैं कुछ और बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पहले ये कहा गया था कि पीडीएस में बहुत सारे लीकेजेस होते हैं, सभी लोग 15% और 100% की बातचीत कहते हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था। हमारे यहाँ अब है वन नेशन वन राशन कार्ड और वो भी डिजिटाइज्ड है, यानी कि अगर मैं बिहार का किसान हूं और दिल्ली में किसी कारणवश रह रहा हूं तो मैं दिल्ली के फेयर प्राइस से अपना अनाज जो भी एलोकेट है मैं विड्रॉ कर सकता हूं। तो ऐसा डेटाबेस करना, ऐसा बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर है। अब मैं आता हूं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रेंथन किए गए वो फार्म गेट से मार्केट तक कैसे जाए, यानी कि किसान के खेत से बाजार तक वो जो जाने वाली बात है उसमें किसान का भाग कैसे हो, उसमें बीच में जो व्यापारी वर्ग है सिर्फ वही फायदा ना ले जाएं, बल्कि व्यापारियों के साथ हमारे किसान कैसे काम कर सके और मूल्य श्रृंखला में कैसे अपनी बात कह पाए। तो जैसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ई नाम की बात मैंने आपसे पहले बताई थी, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो पहले नहीं थी, आज की तारीख में 1.8 लाख ऐसे केंद्र बनाए गए जहां पे इनपुट और वन स्टॉप सेंटर हैं इनपुट और एडवाइजरी सर्विसेज के। तो एक्सटेंशन के लिए एक नया एक पूरा ओपन मार्केट सिस्टम बन गया जहां से ये सारी चीजें हो रही है। मेगा फूड पार्क स्कीम जहां किताबों में थी, सिर्फ गाइडलाइंस में थी, आज सैकड़ों मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ करके और इस पूरे मूल्य श्रृंखला में किस प्रकार से किसानों के पास आ पाए, लगभग 11,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए गए और वो फार्मर्स के माध्यम से खर्च किए गए, ना कि बीच में जो लोग होते हैं उनके माध्यम से खर्च किया जाए।
1: तो आप
0: कुछ ऐसे चैलेंजिंग प्लेसेज हैं जहां पे जैसे मान के चलिए 100 जिले थे, तो उन 100 जिलों को आइडेंटिफाई किया गया कि यहाँ पे क्या कारण है। भाई 75 साल हो गए, जहां एक जिले में प्रोडक्शन एक्स हो रहा है, इन जिलों में x/8 हो रहा है, आखिर क्या कारण है। तो उनको लेकर के और उन जिलों के लिए अलग से स्कीमें बनाई गई, उसके ऊपर सरकार की अलग ओवरसाइट है, एडिशनल सिक्योरिटी रैंक ऑफिसर उसकी मंथली देखरेख करते हैं और उन अमुक जिलों में कैसे प्रोडक्शन बढ़े इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, इसके ऊपर एक पूरी नायाब नीति बनाई जा रही है। तो मुझे लगता है सारा जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जा रहा है और इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान है एलाइड एक्टिविटीज पे, खास करके फिशरीज में और जो डेयरी में, आज आप देख रहे हैं लद्दाख में भी एनडीडीबी ने जाकर के वहां का भी एक डेयरी शुरू किया है, जिस प्रकार से दिल्ली में मदर डेयरी है तो लद्दाख की मदर डेयरी कैसे शुरू हो, या जम्मू कश्मीर में डेयरी से फार्मर्स कैसे जुड़े, या वहां के जो लोकल जो हमारा ह्यूमन रेजिलियंस है उसको कैसे हम इंटीग्रेट कर पाए एग्रीकल्चर के साथ में। तो एक बड़ा बदलाव लाइव स्टॉक डेयरी के सेक्टर में हो रहा है। चौथी बात मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि जो बायो इथेनॉल में और जो सीबीजी में सरकार का ध्यान है कंप्रेस्ड बायोगैस में, और ये कंप्रेस्ड बायोगैस का बड़ा बाजार जो पूरी दुनिया में निकल रहा था एविएशन टर्बाइन फ्यूल, यानी कि सस्टेनेबल एविएशन टर्बाइन फ्यूल के माध्यम से, उसमें गांव की हिस्सेदारी कैसे बढ़े, उसके लिए सैकड़ों सीबीजी प्लांट लगाए जा रहे हैं, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं और ये तेल की कंपनियां उसको खरीद करके और एविएशन टर्बाइन फ्यूल में मिला करके और उसको वो बेच रही है। तो ये इसका सीधा सीधा डिविडेंड जो है वो फार्मर्स के पास जा रहा है। तो इन सारी स्कीमों में फार्मर सेंट्रिसिटी की बात यह है कि अगर मान के चलिए कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव व्यापार करती है तो उसका प्राइस तो किसानों को मिलता है क्योंकि रॉ मटेरियल उनसे वो प्रोक्योर कर रहे हैं, इसके साथ साथ में जो फायदा होता है उसका डिविडेंड किसानों के पास कैसे जाए, ये फार्मर सेंट्रिक एग्रीकल्चर सिस्टम जो डाइवर्सिफाइड है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, वो बनाई जा रही है। तो ये अपने आप में एक मील का पत्थर है। पिछले 12 वर्षों में हम जहां तक चल के आ पाए, हमें ऐसा लगता है कि 2047 तक एग्रीकल्चर के वैल्यू चेन में फार्मर्स की जो भागीदारी बढ़ेगी और उससे एक असमानता कमेगी, ऐसा प्रधानमंत्री जी का ध्यान है और पूरा देश उस ओर अग्रसर है।
1: मिस्टर मिश्रा, आपके पास आते हैं, आप बताएं हमें, एक जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन 2021 में बनाई गई, अलग से एक सहकारिता मंत्रालय बनाया गया और जिस तरह से कोऑपरेशन जो मॉडल है उसका सक्सेस कृषि क्षेत्र में देखा गया है, अगर हम दूध जो सेक्टर है उसकी बात करें, और ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है 10,000, ये कैसे कोऑपरेटिव मॉडल को यूज करके ये कैसे फार्मर्स को लाभान्वित करती है, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं, इस मंत्रालय के महत्व के बारे में कृषि क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाई गई हैं, ये खासकर छोटे और सीमांत किसान हैं, उनके लिए इनका क्या महत्व है?
3: ये जो एफपीओ का कंसेप्ट लेके आए पहले भी एफपीओ बनते थे लेकिन सरकार ने जब अनाउंस किया कि 10,000 हम एफपीओ बनाएंगे विद इन ए डेडलाइन वो डेडलाइन से पहले ही बन गए 10,000 उन्होंने बनवाए क्या उन्होंने फैसिलिटेट किया उसमें उन्होंने स्कीम लेके आए कि हम आपको 50% इक्विटी पार्टिसिपेशन देंगे कोई भी कंपनी वो जो एफपीओ है उसमें या तो आप कोऑपरेटिव बना सकते हैं या एक प्राइवेट कंपनी बना के आप एफपीओ का जो स्ट्रक्चर है उसके तहत आप काम कर सकते हैं तो आप देख लीजिए किसी भी कंपनी में जब 50% इक्विटी कोई देता है उसका वोटिंग राइट होता है वो डिसीजन लेता है वहां पे उस क्षमता में रहता है डिसीजन वही डिसाइड करे लेकिन इस मॉडल में सरकार ने

0: बोला कि हम इक्विटी जरूर देंगे आपको 50% ग्रांट के तहत, लेकिन डिसीजन आपकी होगी, कोई हमारा इंटरफियरेंस नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो बोलते हैं कि स्वयं शासित कर देना, कि आप खुद ही गवर्न करो एफपीओ को और गाइड करते रहना कि भाई आप ऐसे करोगे, उसमें हेल्प करना। हर बृहस्पतिवार को एक वेबिनार होती है जिसमें सारे एफपीओ जोड़ते हैं और दो दो कंपनीज को बुलाते हैं गवर्नमेंट, और ये कई चीज जो लाइमलाइट में नहीं आती है उसमें, लेकिन एफपीओ का जरूर फायदा हुआ है। कई एफपीओ करोड़पति बन गए हैं और गवर्नमेंट का प्लान है कि 2030 तक शायद 10,000 में से 5,000 को करोड़पति में ले आएंगे।
1: तो किस तरह के निर्णय लेते हैं मिलकर जो एफपीओ होते हैं, किस किस क्षेत्र में?
0: इन्होंने पूरी फ्रीडम दे रखी है एफपीओ को, जो चाहे वो कर सकते हैं। एज ए बिजनेस एंटिटी उनको बिजनेस बढ़ाना है, और कृषि के आसपास जितने भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने इनपुट बेच रहा है तो वो डायरेक्टली कंपनी से सोर्स करते हैं और अपने फार्मर के अलावा जो आसपास के लोग हैं उनको देते हैं, सब्सिडाइज नहीं, चीपर रेट पे, क्योंकि वो डायरेक्टली सोर्स करते हैं। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करता है, किसी एफपीओ को मान लीजिए पता नहीं है कहाँ से सोर्स करना है, क्या सोर्स करना है, उसमें गवर्नमेंट उनको मदद करता है, बताता है कि इस कंपनी से आप जुड़ सकते हैं। तो ऐसे जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है उससे कई एफपीओ को बहुत फायदा हुआ है।
1: तो इनपुट्स उनकी कॉस्ट कम होती है और उनको जो प्राइसेस है वो बेटर मिलती है और उनका जो है प्रॉफिट बढ़ता है।
0: बिल्कुल, जो बीच में जितने भी मिडिलमैन इन्वॉल्व होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो वो जो भी कंपनी जो उनको कॉस्ट में देती है, सप्लाई करती है, वो थोड़ा सा मुनाफा करके प्रॉफिट रख के वो बेचते हैं। और अपने फार्मर को कई एफपीओ तो ऐसे हैं जो कॉस्ट जितने लाते हैं उतने में अपने मेंबर को दे देते हैं, तो जो कहीं नहीं मिलेगा उस प्राइस पे आपको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है किसी फार्मर का तो उसका प्रॉफिट भी तो बढ़ता है जब मार्केट प्राइस दूसरे फार्मर के कंपैरिजन में।
1: So that collective power is there. And Mr. Mishra, we would also like your views, and if you could tell us that how government is really empowering the farmers by protecting them from increase in the prices of fertilizers. So this is a very important input, the fertilizers. So this aspect, how it has been taken care of at the policy level in these 12 years. Can you tell us about this empowerment aspect for farmers?
0: See, fertilizer in India is considered the cheapest in the world when you talk about urea particularly. Why? Because government has not raised the price for past two decades or so. And urea currently is available at 267 rupees per bag of 45 kg. Last international price at which India bought urea was $954 per ton. So roughly, if you take $1,000, it comes to around 95,000 per ton. 95,000 means 9,500 per quintal. It is a big amount. So when farmers are sold at 267 rupees, just imagine how much money the government is subsidizing. The result is farmers are getting the product fertilizer at the very cheap rate, so that their cost of production is also limited within certain range.
1: Right.
0: And it is also reflected in the end price which they are selling their produce. If you raise the input cost, the product will also be costlier for the consumers. So it is based on this theory that you subsidize the input to some extent, so that the end product also becomes cheaper for the consumers, and our inflation is also remain under control.
1: Mr. Anand, Mr. Prasad, Mr. Mishra, thank you so much for this insightful discussion on the various aspects of how the farmers and the agriculture sector has been empowered in the last 12 years.
2: Thank you.
3: Thank you very much.
0: Thank you very much.
4: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government, initiatives for empowering farmers and achievements in agriculture sector. Participants were Binod Anand, member of the High Power Committee on MSP and Agricultural Reforms, Government of India, K.V. Prasad and Prabhudat Mishra, senior journalists. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani.
5: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल, किसानों के सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र के उत्थान के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले

बैठे थे भारत सरकार में एमएसपी और कृषि सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य विनोद आनंद और वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद व प्रभुदत्त मिश्रा कार्यक्रम का संचालन कर रही थीं सोनू सूद ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044

एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, जिसे आप सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है गीत मेरे मन मीत और मैं हूं आपके साथ रितिका।

नहीं नहीं बिल्कुल, हमें आपसे बहुत प्यार है, लेकिन अब मैं आप सभी से विदा लूंगी क्योंकि भाई जयती आ चुकी है स्टूडियो में निशिगंधा लेकर। छोड़े जाती हूँ आप सभी को उन्हीं के साथ, अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा।
1: To develop the industrial ecosystem.
2: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
0: आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिवारों को संबल देने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और निशिगंधा में आज जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है आंधी, आवाज है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

दबे पांव आए दबे पांव गए, दबे पांव आए दबे पांव गए, मेरी जिंदगी के फर्श पर कितने निशा साथ छोड़ गए, मेरी जिंदगी के फर्श पर कितने निशा साथ छोड़ गए, दबे पांव आए दबे पांव गए। अगला गीत फिल्म का नाम है आए दिन बहार के, आवाज है लता मंगेशकर की।

बिल्कुल, आवाज की पहचान तभी कायम रह सकती है जब वो आवाज सुनने वाले को याद रहे। आपने कभी सोचा है कि हम कितनी जल्दी कितनी सारी बातें ऐसी भूल जाते हैं जो हमें सहेज कर समेट कर शायद याद रखनी चाहिए थी, यादों का एक पिटारा बनाकर। और हम याद क्या रखते हैं? हम याद रखते हैं वो शिकायतें जिसने हमारी जिंदगी में कभी थोड़ी भी कड़वाहट घोल दी थी। हम उन सारी कड़वी बातों को याद करके और जिंदगी में चलते रहते हैं, पर हम वो आवाजें, वो मिठास, वो सारी बातें भूल जाते हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। ऐसी और भी बातें करेंगे, फिलहाल सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है चरस, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है जानवर और आवाज है

पहले हम बात कर रहे थे कि हमें कितनी सारी बातें ऐसी याद रखते हैं हम जो कि हमें याद नहीं रखनी चाहिए, और हम उन बातों को भूल जाते हैं जो हमारी जिंदगी में मिठास को लेकर आते हैं। अब बात यह है जनाब कि ये जो बातें होती हैं जिन्हें हम सहेज कर अपने दिल में समेट कर शिकवे शिकायतों की बड़ी सी पोटली बनाकर इसलिए रखते हैं ताकि वक्त आने पर हम उन्हें वापस कर सकें जिन्होंने हमें ये शिकायतों की पोटली दी है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं वो हमारी जिंदगी के अलग अलग रंगों को लेकर आते हैं, हमारी जिंदगी में अलग अलग रंगों को भरकर जिंदगी को सतरंगी आभा देते हैं। अब सोचिए कि कोई अगर नाराज हो गया, नाराजगी में किसी ने ऐसी बातें कही जो आपके दिल को लग गई, पर कभी ऐसी बातें भी तो होंगी जो बातें मीठी होंगी, अच्छी होंगी।

हम बातों को उन बातों को लेकर साथ चलते हैं जो बातें हमारी जबान को कड़वा कर देती हैं। पर क्या कहते हैं ना कि वक्त रहते अगर हमने इस कड़वाहट को दूर नहीं की तो समय के साथ साथ हम अकेले होते चले जाते हैं और फिर हम खुद से शिकायत करने लग जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि हम अकेले हो गए। जनाब, ये अकेलापन हम अपनी जिंदगी में अपनी चॉइस से लेकर आते हैं क्योंकि हमने शिकायतों को दूर करना सीखा ही नहीं। हम तो अहम की उस लड़ाई का हिस्सा बन गए जो रिश्तों में आनी ही नहीं चाहिए। आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में अब जो गीत आप सुनेंगे फिल्म का नाम है आरजू, आवाज है मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कहां तक उन पर रखें बेरुखी का सारा हिसाब, कहां तक उन पर रखें बेरुखी का सारा हिसाब, हमारे हिस्से में भी जवाब कम निकले। वो सामने थे मगर आंख भर के देख न पाए, वो सामने थे मगर आंख भर के देख न पाए, दिलों के बीच कई फासले बेनाम निकले। कभी तो हमने भी रिश्तों को हल्के में रखा, कभी तो हमने भी रिश्तों को हल्के में रखा, कभी तो उनके भी अंदाज कुछ नर्म निकले, कभी तो उनके भी अंदाज नर्म निकले। कहां तक उन पर रखें बेरुखी का सारा हिसाब, हमारे हिस्से में भी कुछ जवाब कम निकले। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है किशोर कुमार की और फिल्म का नाम है सागर। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी एक बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। आवाज है किशोर कुमार की और फिल्म का नाम है सफर। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: एकता अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। ममता बनर्जी ने के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रिक्तव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि रिक्तव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा।
1: To develop the industrial ecosystem.
2: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
1: R&D and innovation oriented businesses.
0: आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीबी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिवारों को संबल देने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। फिलीपींस के दक्षिणी मिंडानाओ द्वीप के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में करीब 35 लोगों की मौत हो गई और 200 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। अधिकारियों के अनुसार इस आपदा से लगभग 10,000 परिवार विस्थापित हुए हैं। क्रिकेट में आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 से पहले खेले गए अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया है। ब्रिटेन के कार्डिफ में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 153 रन ही बना पाई। भारत का अगला अभ्यास मैच कल मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ होगा। भारत इस महीने की 14 तारीख को एडजस्टन में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने की एक खूबसूरत महफिल और आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने में आज जो पहला गीत आप सुनेंगे आवाज है लता मंगेशकर और आशा भोसले की और फिल्म का नाम है आए दिन बहार के।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने और गीत सुहाने में आप जो गीत आप सुनेंगे आवाज है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की और फिल्म का नाम है रामपुर का लक्ष्मण।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आज आपके साथ हूं मैं जयती।

किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि मैं तो था मौजूद किताब के लफ्जों में, मैं तो था मौजूद किताब के लफ्जों में, वो ही शायद मुझको पढ़ना भूल गया, वो ही शायद मुझको पढ़ना भूल गया। अगला गीत, फिल्म का नाम है सागर, आवाज है एसपी बाला सुब्रमण्यम की और आशा भोसले की।

और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। छोड़ जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है आरजू।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति

0: सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा।
1: टू डेवलप द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम,
2: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
1: बिजनेसेस आरएनडी एंड इनोवेशन ओरिएंटेड बिजनेसेस।
0: केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश के कोयला और खनन क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। हैदराबाद में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि भारत का कोयला उत्पादन रिकॉर्ड 1 अरब टन तक पहुंच गया है और देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक बन गया है। उन्होंने बताया कि कोयला क्षेत्र में लगभग 5,00,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 25,00,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिवारों को संबल देने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। क्रिकेट में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 से पहले खेले गए अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया है। भारत का अगला अभ्यास मैच कल मेजबान इंग्लैंड के साथ होगा और 14 जून को एडजस्टन में भारत अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ महिला टी20 विश्व कप 2026 अभियान की शुरुआत करेगा। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और कर्नाटक में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। President Draupadi Murmu yesterday conferred gallantry awards to the personnel of the Armed Forces, Central Armed Police Forces and State and Union Territory Police. The awards were conferred during the Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan yesterday. Lieutenant Commander Suraj Parash

आपके साथ हूं मैं जयति। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। अरात सुरमई में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है आंधी, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

किसी ने हाथ क्या थामा, किसी ने हाथ क्या थामा, कमाल होने लगा, लकीरों से परे भी कुछ सवाल होने लगा। किसी ने हाथ क्या थामा, कमाल होने लगा, लकीरों से परे भी कुछ सवाल होने लगा। मैं पोर पोर में ठहरा था एक नाम बनकर, मैं पोर पोर में ठहरा था एक नाम बनकर, वही मेरी रगों में फिर ख्याल होने लगा, वही मेरी रगों में फिर ख्याल होने लगा। किसी ने हाथ क्या थामा, कमाल होने लगा, लकीरों से परे भी कुछ सवाल होने लगा। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है आए दिन बहार के, आवाज है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश, आवाज है लता मंगेशकर की।

आपको पता है कि प्रेम के साथ सबसे खूबसूरत बात क्या है? प्रेम के साथ सबसे खूबसूरत बात ये है कि प्रेम को किसी लंबे चौड़े पत्र, बहुत भारी भरकम शब्द या फिर किसी व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ती। प्रेम इतना खूबसूरत है, इतने सुंदर एहसासों वाला है कि बस छोटे से शब्द में समाकर अपनी पूरी कहानी कह देता है, छोटे से जगह में अपनी स्थान बना लेता है। प्रेम के साथ सबसे खूबसूरत बात यही है। प्रेम व्यक्त करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारी तैयारियां करें और फिर प्रेम को जताएं। प्रेम एहसासों के सफर को तय करके दिल तक पहुंचता है और दिल में एक नमी सी पैदा कर देता है। और वो एहसास आखिर आते कहां से हैं? उन एहसासों के लिए किसी ने कहा कि दो लफ्ज में हजारों रंज पोछ डाले, दो लफ्ज में हजारों रंज पोछ डाले, बेवक्त उसने पूछकर कि कैसे हो, बेवक्त उसने पूछकर कि कैसे हो। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब अगला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है प्यार का कर्ज, आवाज है सुदेश भोसले और अनुराधा पौडवाल की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

अरे वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का। तो फिर मिलने के वादे के साथ जयती चाहे ये अनुमति पर चलते चलते याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर अर्चित होंगे आपके साथ। मैं छोड़ जाती हूँ आपको एक प्यारे से गीत के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। पश्चिम बंगाल

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है। वहीं केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश के कोयला और खनन क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। हैदराबाद में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि भारत का कोयला उत्पादन रिकॉर्ड 1 अरब टन तक पहुंच गया है और देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक बन गया है। उन्होंने बताया कि कोयला क्षेत्र में लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उपराष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिवारों को संबल देने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। क्रिकेट में आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 से पहले खेले गए अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया है। भारत का अगला अभ्यास मैच कल मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ होगा। भारत इस महीने की 14 तारीख को एजबेस्टन में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ महिला T20 विश्व कप 2026 अभियान की शुरुआत करेगा। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और कर्नाटक में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. President Draupadi Murmu yesterday conferred gallantry awards to the personnel of the Armed Forces, Central Armed Police Forces and State and Union Territory Police. The awards were conferred during the Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan yesterday. Lieutenant Commander Suraj Parasha, Lieutenant Colonel Nitish Bharati Shukla, Major Aditya Pratap Singh, Inspector Lakshman Kevad and Rameshwar Durga Deshmukh were awarded Shaurya Chakra. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of armed forces were also present on the occasion. Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana has achieved nationwide coverage, with West Bengal joining the world's largest health assurance scheme yesterday. The scheme provides health cover of up to 5 lakh rupees per family per year for secondary and tertiary care hospitalization to eligible beneficiaries. National Health Authority and West Bengal Government signed a memorandum of understanding.

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 3:10 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

आज के इस कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफी जी ने, कभी रात दिन हम दूर थे।

कभी रात दिन हम दूर थे। इस नींद से क्या शिकवा, इस नींद से क्या शिकवा जो आती नहीं रात भर, कुसूर तो उन सपनों का है जो सोने नहीं देते। 3:18 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

वजह पूछने का मौका ही नहीं मिला, वजह पूछने का मौका ही नहीं मिला, वो लहजा बदलते गए और हम धीरे धीरे अजनबी होते चले गए। 3:25 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

हजारों उलझने हैं राहों में, हजारों उलझने हैं राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, बस चलते रहिए जनाब। 3:31 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अलचित के साथ।

लता मंगेशकर जी और मुकेश जी की आवाज में हम तो तेरे आशिक हैं। खता उनकी भी नहीं थी, खता उनकी भी नहीं थी, वो क्या ही करते, बहुत चाहने वाले थे, वो किस किस से वफा करते। 3:37 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 3:42 हो चुके हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम हम राही मेरे यानी अर्चित के साथ।

मंदिरों मस्जिदों में सजदा दिन शाम सुबह शाम करते हो, मंदिरों मस्जिदों में सजदा सुबह शाम करते हो, खुदा वहाँ पे भी है साहब जहाँ तुम गुनाह करते हो। 3:47 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफी जी की आवाज में आपकी खातिर बड़ा नायाब सा रिश्ता है उनका और मेरा बड़ा नायाब सा रिश्ता है उनका और मेरा ना मैं शामिल हूं उनके अपनों में ना वो शामिल है मेरे गैरों में 3:58 हो चुके हैं अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमराही

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने।

0: है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है। वहीं केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश के कोयला और खनन क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। हैदराबाद में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि भारत का कोयला उत्पादन रिकॉर्ड 1 अरब टन तक पहुंच गया है और देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक बन गया है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिवारों को संबल देने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मेक्सिको की खाड़ी में कल देर रात 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप 28 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप का केंद्र क्यूबा के पश्चिमी तट के पास था। भूकंप के झटके क्यूबा, मेक्सिको और अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के कई इलाकों में महसूस किए गए। हवाना और आसपास के क्षेत्रों में इमारतें हिलने लगीं और लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि अब तक किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और कर्नाटक में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 4:11 हो चुके हैं और अब हमेशा की तरह समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है अरुणिमा, जिसमें एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

0: फर्क बहुत है तेरी और मेरी समझ में फर्क बहुत है तेरी और मेरी समझ में तुमने उस्तादों से सीखा होगा मैंने हालातों से 4:19 हो चुके हैं सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा
1: हर चेहरा यहां चांद

कुछ हद तक याददाश्त का कमजोर होना भी कोई बुरी बात नहीं है जनाब। कुछ याददाश्त का कमजोर होना भी कोई बुरी बात नहीं है जनाब। बहुत बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। 4:28 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा।

लता मंगेशकर जी की आवाज में आपसे मिलिए। ख्वाहिशें कुछ यूं भी अधूरी रह गईं, ख्वाहिशें कुछ यूं भी अधूरी रह गईं, पहले उम्र नहीं थी और अब उम्र नहीं रह गई। 4:34 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। कार्यक्रम अरुणिमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या। तुझे देखा,

मोहम्मद रफी जी की आवाज में तुझे देखा तुझे चाहा कुछ कह गए कुछ सह गए कुछ कहते कहते रह गए मैं सही तुम गलत के खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए

ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम क्या करें तुझे बेहतर बनाने की कोशिश में तुझे ही वक्त नहीं दे पा रहे हैं तुझे बेहतर बनाने की कोशिश में तुझे ही वक्त नहीं दे पा रहे हैं माफ करना ऐ जिंदगी हम तुझे ठीक से नहीं जी पा रहे हैं 4:47 हो चुके हैं सुनते रहिए कार

चलो अब थोड़ा सुकून से जिया जाए, चलो अब थोड़ा सुकून से जिया जाए, जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर ही रहा जाए।

आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे 4:58 हो चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम अरुणिमा। अब से कुछ ही देर बाद आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले भी शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी के सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र जैन ने महाराष्ट्र में 18 जून को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। यह उपचुनाव सुनेत्रा पवार के राज्यसभा से इस्तीफे के बाद कराया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुए भीषण आग दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हो गए हैं। इस्पात मंत्रालय के अनुसार अत्यधिक गर्म पिछले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान यह हादसा हुआ। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दुर्घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिवारों को संबल देने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। फिलीपींस के दक्षिणी मिंडानाओ द्वीप के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में करीब 35 लोगों की मौत हो गई है और 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। फिलहाल राहत और बचाव अभियान जारी है। अधिकारियों के अनुसार इस आपदा से लगभग 10,000 परिवार विस्थापित हुए हैं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और कर्नाटक में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Akhila. President Draupadi Murmu conferred gallantry awards during the defence investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan last evening. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of armed forces, were also present on the occasion. The President conferred 7 Kirti Chakra, 15 Veer Chakra and 29 Shaurya Chakra to the personnel of the Defence Forces, Central Armed Police Forces and State and Union Territory Police during the ceremony. Sub-Inspector Muhammad Imtiaz, along with Constable Deepak Chengakum of BSF, who laid down life in the line of duty at the international border in Jammu, were awarded Veer Chakra posthumously. In Andhra Pradesh, 8 people were killed while 6 others got injured in a major fire accident at the Vishakhapatnam steel plant of Rashtriya Ispat Nigam Limited last evening. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister N. Chandrababu Naidu have expressed grief over the loss of lives in the incident. Meanwhile, the Prime Minister also announced an ex-gratia of 2 lakh rupees for the next of kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured from the Prime Minister's National Relief Fund. Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System, LPMS, today in New Delhi. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and passenger movement through technology-driven solutions. LPMS is a digital platform designed to integrate operations across land ports into a unified system. It will enable secure real-time exchange of logistics and regulatory information, bringing land ports on a par with digital systems already in place at airports and seaports. The system will also provide end-to-end digital workflows for cargo and passenger processing, including slot booking, payments, tracking and single-window clearances, while improving coordination among government agencies and private operators. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman met with West Bengal Chief Minister Subendu Adhikari in New Delhi yesterday to discuss ways

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 5:10 हो चुके हैं लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी अर्चित के साथ

आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम जिसका नाम है भोर सुहानी। आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम किशोर कुमार जी की आवाज में गाया हुआ एक बहुत ही पुराना और प्यारा सा गीत।

जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से, कुछ नजर अंदाज से। 5:17 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी।

उम्र जाया कर दी लोगों ने औरों में नुक्स निकालते निकालते इतना खुद को तराशा होता तो खुद ही फरिश्ते बन जाते। 5:22 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।